0: Radio 2098.5 FM Community Program
1: Samajik Hindi Karyakram Darpan Akashvani 2098.5 FM
0: Welcome to the Hindi Show featuring news, interviews, music and community announcements.
1: स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में आप सुनेंगे समाचार विचार संगीत और सामाजिक सूचनाएं
0: रेडियो 2098.5 एफएम मल्टीकल्चरल रेडियो
2: आज रविवार युगात 5126 कलयुग विक्रम संवत 2083 आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी 26 जुलाई 2026 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को संजीव शर्मा और प्रदीप उपाध्याय का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का अंततः इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों को भी लिखा खत। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले मेट्रो इंटरनेट और खाना बंद करा दिया लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाए। क्या मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा, अनशन पर उठे सवालों पर भड़के वांगचुक। सीएम योगी का आगरा दौरा, 342 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, 36 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, दिल्ली से लेकर असम तक पाक के शहजाद भट्टी नेटवर्क के तार। हवा में ही होगा ड्रोन का अंत, क्या है भार्गवास्त्र। और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति ने किया मंजूर। अब सुनिए समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने इस्तीफे का स्वागत करते हुए कहा कि लोकतंत्र की जीत हुई। प्रधानमंत्री को भेजे गए इस्तीफे में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों से मेरा मन दुखी है, मैं जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा था। उन्होंने पत्र में कहा कि यह पक्का करने के लिए कि जंतर मंतर और पूरे देश में जो हालात हैं उनसे देश विरोधी तत्वों को फायदा ना हो, देश एकजुट रहे, भारत में छात्र कानूनी पचड़ों में ना उलझें और अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर ध्यान दें, मैंने प्रधानमंत्री को अपना त्याग पत्र भेज दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि पहले ही कहा था कि युवाओं का शांतिपूर्ण संघर्ष जाया नहीं जाएगा। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर नाराजगी जताते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी मेट्रो, रास्ते, दुकानें, इंटरनेट और खाना तो बंद करा दिया पर वे पेपर लीक बंद नहीं करा पाए। गौरतलब है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन में भारी भीड़ उमड़ने की आशंका को देखते हुए वहां 6 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई हैं। अनशन समाप्त होने के बाद ईमानदारी पे उठ रहे सवालों पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भड़क गए। सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल तोड़ने पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि छात्रों के लिए 26 दिन तक भूखा रहने के बाद 11 किलो वजन कम हो गया, मसल्स चले गए और मेरे ऑर्गन्स और ब्रेन ऐसे डैमेज हो गए हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है, और यह सब लद्दाख की कड़ाके की ठंड से आने के बाद, दिल्ली की चिलचिलाती धूप में यह सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा कि मेरा अनशन कितना पवित्र था। उन्होंने कहा कि मैंने किसके हाथों अनशन तोड़ा, क्या डील हुई, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों को यह नहीं पता है कि मैं किन हालात से गुजरा हूँ। मेरा परिवार पिछले एक दो हफ्तों में किन हालात से गुजरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के दो दिवसीय महत्वपूर्ण दौरे पर आ रहे हैं। उन इस दौरान मुख्यमंत्री ताज नगरी को 342 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 53 बड़ी विकास परियोजनाओं की शानदार सौगात देंगे। अपने इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी कई विभागों की 292 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें स्वास्थ्य और शहर के बुनियादी ढांचे से जुड़े कई बड़े कार्य शामिल हैं। प्रमुख रूप से 93.81 करोड़ रुपए की लागत से 150 बेड वाले लेडी लॉयल अस्पताल का निर्माण, इसके अतिरिक्त DIOS का नया भवन, श्री कैलाश मंदिर का पर्यटन विकास, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल और बलकेश्वर थीम पार्क का पुनर्निर्माण कार्य भी शामिल है। असम पुलिस ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है। धुबरी, चिरांग और बारपेटा में 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने मोबाइल फोन, सिम कार्ड और कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर और आतंकवादी शहजाद भट्टी का नेटवर्क भारत में युवाओं को बरगलाने और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता रहा है। यह नेटवर्क भारत के कई राज्यों में फैल चुका है और सुरक्षा एजेंसियां इस पर लगातार शिकंजा कस रही हैं। भारत ने ड्रोन खतरों से निपटने के लिए स्वदेशी काउंटर स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र विकसित किया है। यह हार्ड किल तकनीक के जरिए ड्रोन स्वॉर्म हथियारबंद ड्रोन और आत्मघाती ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर सकता है। यह 10 सेकंड में 64 माइक्रो रॉकेट्स दागने और 10 किलोमीटर दूर से छोटे ड्रोन का पता लगाने में सक्षम है। यह प्रणाली 5000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी प्रभावी ढंग से काम करेगी। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लिया। बिट्टू केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। उनके इस्तीफे के बाद पंजाब की राजनीति से लेकर मोदी सरकार के संभावित कैबिनेट फेरबदल तक कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 1,44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 96.97 रुपए और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की 67.46 रुपए। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त होते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम।
3: दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप उपाध्याय का नमस्कार। संजीव जी, उम्मीद है सिडनी की इस ठंडी सुबह में हमारे श्रोता चाय की प्याली के साथ अपने रेडियो सेट्स ऑन कर चुके होंगे और अगले पूरे 2 घंटे हमारे साथ बिताने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। चूँकि मौसम ठंडा है और हमारा कार्यक्रम भी 2 घंटे का है, अतः श्रोताओं से आग्रह करूँगा कि आप लोग 2 प्याली चाय के साथ तैयार रहें, ताकि जब आपको चाय की दोबारा ज़रूरत पड़े तो हमारा कार्यक्रम बीच में छोड़कर आपको चाय बनाने के लिए न जाना पड़े। श्रोताओं, अभी अभी संजीव जी ने आपको देश दुनिया की ताज़ा खबरों से रूबरू कराया है। आज की प्रस्तुति में करंट अफेयर्स पर खुली और बेबाक बातचीत होगी, कम्युनिटी अनाउंसमेंट होंगे। उसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ एक नहीं बल्कि 2 अतिथि उपस्थित हैं, जिनका परिचय हम थोड़ी देर में आपसे करेंगे।
2: विशिष्ट अतिथि
3: बिल्कुल। और उसके अलावा आज विशेष कार्यक्रम संजीव जी की फरमाइश पर है, हमारे जो गीतकार हैं आनंद बख्शी, उनका बर्थडे होता है 21 जुलाई को, तो उस पर एक हम विशेष कार्यक्रम लेके आए हैं। संजीव जी बहुत रोचक जानकारी जो हैं आनंद बख्शी जी के बारे में लेकर आए हैं और आज उन्हीं के सुंदर सुंदर गाने आपको सुनवाएंगे हम। और यह सिर्फ सुनने का नहीं बल्कि जुड़ने और सहभागिता का कार्यक्रम है। अगर आपके मन में कोई विचार हो, कोई अनुभव हमारे साथ बांटना चाहें, तो आपका हमेशा स्वागत है। तो تیار ہو جائیے ریڈیو سیٹ آن رکھیے کیونکہ درپن کا خوبصورت سفر اب شروع ہونے جا رہا ہے کارکرم کی شروعات کرتے ہیں ایک سندر سے آج کے وچار سے اور پھر سنیں گے ایک سندر سا بھجن آج کل اے آئی اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ مشینیں انسانوں کی نوکری لے لیں گی لیکن جھوٹ بولنے کی کلا بھوشیہ میں بھی صرف انسانوں کے پاس ہی سرکشت رہے گی شروتاؤ یہ آج کا وچار نہیں ہے بلکہ یہ چٹکی میں نے آپ کے دھیانکرشن کے لیے لی تھی آج کے وچار میں بات ہوگی کرودھ کی کرودھ بڑا ہو کر پرتیشودھ بنتا ہے اور پرتیشودھ بوڑھا ہو کر پشچاتاپ اتہ کرودھ کے چھڑوں میں ہم جتنا دھیریہ رکھیں اتنا ہی اچھا ہے کھماشیلتا اور کرونا کسی بھی منشیہ کے شریشتم گڑ ہیں

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा रेडियो दर्पण शो पर। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के उस महान शायर और गीतकार की, जिसने आम बोलचाल की भाषा को ऐसा तराशा कि वो 40 से भी ज़्यादा सालों तक देश की धड़कन बना रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आनंद बख्शी साहब की, जिन्होंने 6000 से भी ज़्यादा गाने लिखे और हर पीढ़ी को गुनगुनाने की वजह दी। दोस्तों, आनंद बख्शी जी का जन्म 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी में हुआ था। देश के विभाजन के समय उनका परिवार भारत आ गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले वे भारतीय नौसेना और बाद में भारतीय सेना में एक सैनिक के रूप में कार्यरत थे। फौज में रहते हुए भी वे अपने साथियों के लिए गीत लिखा करते थे। बख्शी जी का असली सपना गायक या गीतकार बनना था। वे अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आ गए और उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा। उन्हें पहला ब्रेक 1958 में मिला। फिल्म का नाम था भला आदमी, जिसके लिए उन्होंने धरती के लाल ना कर इतना मलाल गाना लिखा था। और 1965 की फिल्म हिमालय की गोद में जब जब जब फूल खिले से उन्हें बड़ी पहचान मिली। इसके बाद आराधना, अमर प्रेम, शोले, बॉबी, अमर अकबर, एंथनी जैसी अनगिनत फिल्मों के जरिए उन्होंने भारतीय संगीत जगत पर राज किया। तो श्रोताओं, आज हम आनंद बख्शी जी के गीतों को लेके आए हैं, उनके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। बट जैसा पहले हमने कहा था कि आज हमारे स्टूडियो में दो अति विशिष्ट गेस्ट हैं, तो उपाध्याय जी, क्या आप हमारे गेस्ट का मुलाकात हमारे सुनने वालों से कराएंगे?
1: और आज के हमारे जो मेहमान हैं, बड़ा सुंदर संगम है विज्ञान, साहित्य, काव्य, तो कुल मिलाकर आज का कार्यक्रम जो है वो बहुत ही रोचक, हर विधा से परिपूर्ण होने वाला है।
0: जी,
1: तो वरिष्ठता के क्रम में मैं आरंभ करूंगा, सीनियर मोस्ट फर्स्ट। तो आज के मेहमान मेरे गुरु भी हैं। प्रोफेसर आरपी माथुर ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से फिजिक्स विभाग में कई दशकों तक शिक्षक के रूप में सेवाएं दी हैं। साथ में डीन फैकल्टी ऑफ साइंस, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स जैसे पदों को भी सुशोभित किया है। आपकी कई किताबें मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ी हैं। 175 से अधिक रिसर्च पेपर्स, एक दर्जन से अधिक विद्यार्थियों ने आपके साथ पीएचडी की है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, इटली में आपने पोस्ट डॉक्टर रिसर्च की है। इसके अलावा आपने 11 पुस्तकें भी लिखी हैं। आपने यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएँ दी हैं। तो ये तो था प्रोफेसर साहब का फिज़िक्स वाला प्रोफाइल, लेकिन आपके जीवन में एक और पहलू भी है, वह हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ है। आपको लघु कथाएं, कविताएं, शेर व शायरी लिखने का भी शौक़ है। सिडनी में आपने प्रोफेसर माथुर को अवश्य ही विभिन्न काव्य गोष्ठियों, कवि सम्मेलनों में अतिथि के रूप में देखा होगा। श्रोताओं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रोफेसर माथुर आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं और हमारे कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ रहेंगे। इस दौरान हम प्रोफेसर साहब से विभिन्न विषयों पर बातचीत करेंगे और श्रोताओं की विज्ञान और साहित्य ज्ञान की प्यास को बुझाने का प्रयास करेंगे। तो प्रोफेसर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी। मैं इस स्टूडियो में दूसरी दफ़े आ रहा हूं और तकरीबन एक साल या उससे भी ज़्यादा पहले मैं आया था, और मैं जब यहाँ घुसा इस स्टूडियो में तब से बराबर ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछली दफ़े मैंने क्या कहा था, कहीं वो रिपीट ना हो जाए, तो उसे अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। और ये बड़ी अच्छी बात भी है और मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है इस बात पे कि इस वक्त स्टूडियो में चार महानुभाव हैं और उसमें से चारों का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किसी ना किसी रूप में संबंध रहा है, चाहे 6 महीने का लिया हो या लंबा संभव वो हो। और अलीगढ़ अभी एक यहाँ पे फंक्शन, एक गोष्ठी में भाग लिया था और हमारे संग और भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही विशिष्ट प्रोफेसर मौजूद हैं जिनका परिचय अभी मेरे बाद दिया जाएगा। तो हम लोग वहाँ पे थे और वहाँ पे भी चार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग मौजूद थे, اور وہ سب شاعری کرتے تھے تو دیکھیے علی گڑھ یونیورسٹی کی وہ روایت جو مجاز کے زمانے سے شروع ہوئی اور پھر علی سردار جعفری اور پھر یہ لاسٹ میں جو ہمارے شہریار وغیرہ ہوئے اور اس کے بعد اب شمبھوناتھ جی ہیں وہاں جو اس وراثت کو آگے چلا رہے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آپ کو ہر جگہ دکھائی دے گی اور علی گڑھ یونیورسٹی کا ایک اپنی چھاپ ہے علیگ وہ آپ کو ہر جگہ دکھائی دے گا تو بہت بہت دھنیہ واد آپ کا مجھے پھر سے اسٹوڈیو میں بلانے کے لیے اور آپ سب سے پھر سے میرا پرچے دینے کے لیے
1: پروفیسر صاحب آپ نے تو بالکل علی گڑھ کا جو برانڈ امبیسڈر جو بولتے ہیں اور آپ نے بہت ہی سندر جو سہیوگ ہی کہوں گا میں کہ جو چار لوگ ہیں کیونکہ ہم میں تو خود علی گڑھ سے میں نے انجینئرنگ کی پڑھائی کی ہے اور باقی ہمارے مہمان جیسا بتایا وہاں پہ ہمیشہ
0: میں وہ چھ مہینے والا
1: ہاں یہ کم جانا ہوا تتھیہ ہے ہماری درپڑ کی ٹیم کے بھی شاید بہت سے سدسیوں کو یہ بات نہ معلوم ہو کہ سنجیو جی نے بھی ویسے تو انجینئرنگ انہوں نے الہ آباد سے کیا تھا لیکن چھ مہینے جو تھے وہ علی گڑھ میں بھی انہوں نے گزارے ہیں اس کے بعد جو تھے پھر وہ وہاں چلے گئے تھے اسے میں اپنا درواگیہ مانتا ہوں کیونکہ اگر سنجیو جی وہاں نہ گئے ہوتے تو ہم شاید سہپاٹھی رہے ہوتے تو چلیے بہت ماتھر صاحب اور آج کا کاریکرم میں تو بھارت نے ابھی وگیان میں ابھی جیسے اسپیس اسرو کا پروجیکٹ ابھی تھا کافی پچھلے دنوں سماچار میں رہا تو اس پہ بھی چونکہ آپ آج ہم آپ کی تھوڑی فزکس کی جو آپ وگیان میں ہمارے شروتاؤں کو ہم چاہیں گے کہ آپ ان کو جو ہے وہ گیان وردھن ان کا کریں کہ کیسے کیسے بھارت نے کیا ہے اور آنے والے آگے کاریکرم میں ہم ان وشیوں پر بھی بات چیت کریں گے تو سنجیو جی آپ نے سندر اتنا آنند بخشی کا اتنا سندر پریچے جو ہے دیا ہے شروتاؤں کے من میں اب جگیاسا ہوگی کہ ان کے کون کون سے اچھے گانے ہیں شروتاؤں کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ بہت سارے گانے انہوں نے لکھے ہیں قریباً شاید 4000 سے زیادہ
0: 6000
1: گانے تو اور ایک سے ایک گانا اچھا ہے اور ان کی خاصیت یہ تھی کہ بڑی سرل بھاشا میں لکھتے تھے جس کو عام جن کی بھاشا بولتے ہیں ادر وائز وہ کچھ شاعر اتنے جٹل شبدوں کا پریوگ کرتے ہیں کہ کئی بار علی گڑھ والوں کو بھی سمجھنے میں دقت ہو جاتی ہے کہ شبد کا کیا ارتھ ہے تو ایک سندر سا میں ایک رومانٹک گانا جو ہے چلا کے جو ہے گانے کی شروعات کرتے ہیں ایک ڈویٹ جو ہے
0: بالکل

0: Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops.
1: श्रोताओं ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश
2: तो गाना भी इंतजार वाला था और हमारे श्रोता भी इंतजार कर रहे होंगे कि हमारे दूसरे मेहमान कौन है अलीगढ़ विश्वविद्यालय से है वो भी तो नाम डॉक्टर शंभुनाथ तिवारी थोड़ी शिक्षा के बारे में बताऊं बीए आपने किया इलाहाबाद से तो संजीव जी इलाहाबाद का भी कनेक्शन है यहाँ पर उसके बाद एमए हिंदी में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लिया साहब ने और उसके बाद एमफिल और पीएचडी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से तो अगर विश्वविद्यालयों का संगम देखा जाए तो इलाहाबाद से बात चल के फिर जामिया मिलिया और घूमकर फिर अलीगढ़ में आई तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में विभिन्न संस्थानों में शिक्षक के रूप में सेवा देने के पश्चात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं अलीगढ़ से हैं तो जाहिर है शेर व शायरी का शौक तो होना ही है आपके द्वारा प्रकाशित समीक्षात्मक लेख व्यंग कविताएं, गीत गज़ल व पुस्तकों की लिस्ट काफ़ी लंबी है उस पर हम लोग कार्यक्रम के दौरान चर्चा करेंगे तिवारी जी का परिवार सिडनी में रहता है अतः हम लोगों का सौभाग्य है कि आपसे मिलना होता रहता है पिछले प्रवास में मैंने आपको काव्य गोष्ठियों में सुना था आज तिवारी जी दर्पण हिंदी रेडियो के श्रोताओं के भाषा मनोरंजन व ज्ञानवर्धन के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं तो तिवारी जी सिडनी के लोकप्रिय हिंदी रेडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का दोनों उद्घोषक संजीव जी और प्रदीप जी आपने मुझे आमंत्रित किया दर्पण स्टूडियो में जो बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है और बहुत खुशी की बात है कि जब पिछली बार आपने बुलाया था तो उस कार्यक्रम को जो भारत में डिप्टी हाई कमिश्नर हैं उन्होंने अपने ट्विटर पर उसको रिकॉग्नाइज़ किया और उसको उस पर लिखा उन्होंने अब फ्रॉम अलीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया और एक लैंग्वेज को एक ब्रिज के रूप में उन्होंने किया और हमारे देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री सबको उन्होंने टैग किया ये बड़ी उपलब्धि है और दर्पण स्टूडियो का नाम लिख कर उन्होंने ये किया बात चल रही थी माधुर साहब हमारे बहुत ही वरिष्ठ हैं और संयोग ये देखिए कि हम चारों कहीं ना कहीं अलीगढ़ से मिलते हैं लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं ये कहता हूँ कि हम अलीगढ़ को ही नहीं हम अलीगढ़ के बहाने पूरे भारत को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रस्तुत कर रहे हैं संजीव जी का संबंध मथुरा से है
1: जी
3: वे यमुना की सुगंध को लेकर इलाहाबाद गंगा के पास गए यमुना और गंगा जब दोनों मिलते हैं तो उस गंगा यमुनी तहजीब का नाम होता है अलीगढ़
1: जी
3: उन दोनों तहजीब को जीते हैं वो लोग

0: तो श्रोताओं आपको शाहरुख खान और काजोल की ये जोड़ी का गीत आशा करता हूँ पसंद आया होगा।
1: बिल्कुल, ये भी संजीव जी एक जिसको कालजयी फिल्म बोलते हैं
0: जी,
1: बिल्कुल वैसी थी, 1995 में ही आई थी
0: जी,
1: मेरी 75 में शोले आई थी, तो ये 20-20 साल के अंतराल पे शायद पिक्चरें आती
0: हैं। उपाध्याय जी, आपको अगर याद होगा कि हम लोग 92 के करीब आए थे यहाँ पे, और तब तक यहाँ फिल्मों का कोई मतलब हिंदी फिल्में देखना वॉज लाइक अ ड्रीम, सपना था। और फिर ये फिल्म आई और किसी ने, आप अगर याद हो, हर्स्टविल में एक कोई कम्युनिटी का जो हॉल था वहाँ पे ये फिल्म हम लोग देखने गए थे, और वहाँ से जो फिल्मों की सिडनी में शुरुआत हुई उसमें ये फिल्म शायद, फिर एक फेयरफील्ड में किसी ने एक सिनेमा हॉल
1: हायर किया था। हाँ, हम लोगों ने उस यात्रा के हम लोग साक्षी रहे हैं कि कहाँ वो एक मेकशिफ्ट हॉल होता था, उसमें मूवी चलती थी, और आज हम हॉइट्स में और इवेंट में मूवीज को लगा देखते
0: हैं। वो तो सपना था, कभी हम सोच ही नहीं सकते थे कि हॉइट्स और वो सब जगह फिल्म कभी देख पाएंगे हिंदी की।
1: बिल्कुल,
0: तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वो हस्टविल से,
1: कल्ट मूवी थी अपने दौर की। तो आशा करते हैं श्रोताओं को ये गाना पसंद आया होगा। थोड़ा एक सामयिक चर्चा पे मैं ले चलता हूँ, और उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे साथ दो शिक्षाविद बैठे हुए हैं, और काफ़ी लंबा अनुभव दोनों का विभिन्न कालखंडों में रहा है, तो हमको एक पूरा, एक समझ लीजिए 50-60 साल का जो है पूरा स्पैन हमको मिलेगा कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो है कहाँ से आरंभ होके और इस समय इस स्थिति में आई है, तो कैसे आई है। तो पिछले दिनों जैसे नीट एग्ज़ाम जो था वो काफ़ी चर्चा में रहा, उसका पेपर लीक हुआ, और पिछले दिनों काफ़ी आंदोलन भी रहा, और संजीव जी ने समाचार में बताया भी था कि जो उनकी मुख्य मांग थी कि शिक्षा मंत्री को जो है इस्तीफ़ा देना चाहिए, और कल रात उन्होंने फाइनली जो है सरकार ने उनका इस्तीफ़ा लेकर जो है एक उस दिशा में आगे बढ़े हैं। तो ये जो पेपर लीक हुआ है, और जो कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एग्ज़ाम किया जाता है, और इसके नंबर्स जो हैं संजीव जी बहुत बड़े हैं, मतलब कितने 20 लाख विद्यार्थी,
0: वही मैंने आपको बताया कि,
1: और देश के विभिन्न कोनों में से इसके सेंटर रखे जाने हैं, और पेपर, तो पेपर लीक होने के लिए बहुत सारे बीच में कहीं पे भी यहाँ से एक जगह से चलता है तो वो हो जाता है, लेकिन हाँ व्यवस्था का इसमें फेल्योर तो है ही, ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि
0: वो है उपाध्याय जी। बट जैसे आज आपने देखा होगा कि विदेशी सारी प्रेस कवर कर रही है कि पेपर लीक ये, बट शायद उनको उसके स्केल का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। एक तो आप सोचिए पूरे भारत में ये एग्ज़ाम एक साथ होता है, तो खाली वो डिस्ट्रीब्यूशन पेपर्स को हर जगह पहुंचाना इज़ अ बिग लॉजिस्टिक एक्सरसाइज। तो मेरी किसी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो मैं पूछा कि क्या, तो वो बोली कि 20 लाख में 20 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, और उसकी 85,000 रैंक है, और उसको लग रहा है कि उसको तो कुछ भी, मतलब 20 लाख में आप अगर पहले 1 लाख में भी आते हैं तो इट्स, तो वो स्केल सोचिए फिर ये डिस्कशन। तो मैं चाहता हूँ कि सुनने वाले वो स्केल ध्यान में रखें,
1: पूरा परिप्रेक्ष्य जो है आपके साथ रहेगा, कितने बड़े एक एस्टेब्लिशमेंट की हम बात कर रहे हैं, और उसमें कहाँ कहाँ पे गड़बड़ होने की संभावना है, और एक भी जगह गड़बड़ हो गई तो पूरा सिस्टम,
0: और दूसरी तरफ व्हाट्सएप है, ये है, टेलीग्राम है, एक सेकेंड में फैलने में वो
1: बिल्कुल
0: टाइम नहीं लगा।
1: तो चलिए मैं तिवारी जी से आरंभ करता हूं, और आप तो क्योंकि वर्तमान में भी इस समय शिक्षा में जुड़े हुए हैं, तो तिवारी जी समस्या से तो आप रूबरू हैं, और मेरे ख्याल से चूंकि भारत में रहते हैं तो आपको हर साल इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जहां भी गड़बड़ होती होगी तो आपके संज्ञान में तो आती रहती होगी। तो क्या आपको इसका क्या रूट कॉज जिसको बोलते हैं क्या लगता है, और समाधान की तो बात उसके बाद में होगी, मतलब ऐसा क्यों होता है?
2: उपाध्याय जी, भारत ने जब नई शिक्षा नीति लागू की 2020 NEP 2020 कहा गया उसको, उसमें दो तीन पक्ष बहुत ही इन्होंने महत्वपूर्ण डाले, उसमें एक है एथिक्स और दूसरा है वैल्यू। तो एथिक्स और वैल्यू बेस्ड जो एजुकेशन है इस पर गवर्नमेंट का बहुत जोर है, और मैं ये मानता हूँ कि जब हम शिक्षा में जुड़ते हैं टीचिंग में आते हैं जैसे माथुर साहब हैं मैं हूँ और भी जो तमाम सारे शिक्षक हैं उनका दायित्व समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जब हम शिक्षक बनते हैं तो शिक्षक केवल एक नौकरी नहीं है यह एक दायित्व है हमारे सामने वो पीढ़ी होती है जिसको संवारने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है और समाज एक भरोसा करता है और सबसे बड़ा जो इथिक्स और मॉरल और वैल्यूज की बात है वो शिक्षकों के माध्यम से ही हमारे सामने आता है अगर हम उसमें कहीं भी शिथिल होते हैं तो मेरा ये मानना है कि पूरे समाज पर उसका असर पड़ता है आप खड़े होते हैं क्लास में आपके सामने पूरी पीढ़ी होती है आपको फॉलो करती है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं गलतियाँ हो रही हैं कुछ सिस्टम लीक प्रूफ नहीं है और कुछ हम में थोड़ा मॉरल कम हुआ है जैसे मैं ये कहूँ
0: जरूर
2: कि अगर शिक्षक ये शिकायत करें कि विद्यार्थी आजकल पढ़ते नहीं हैं और वो सम्मान नहीं करते अध्यापकों का मेरे अपने जीवन में जो अनुभव है आज भी अच्छे शिक्षकों का उतना ही सम्मान है लेकिन हमें शिक्षक को पलट कर ये देखना होगा कि क्या हम उस मानक पर खरे उतर रहे हैं जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर कहूँ कि बादल अगर ये शिकायत करे कि ये पौधे हरे भरे नहीं हो रहे हैं तो उस शिकायत से पहले उसे ये देखना होगा कि क्या वो बरस भी रहा है अगर बादल बरसे और फिर पौधे हरे भरे ना हो तब तो ये शिकायत वाजिब है
0: जी
2: जब बादल बरस ही नहीं रहा है और शिकायत कर रहा है तो कहते हैं ना रिलेशन आर रेसिप्रोकल तो वो रेसिप्रोक्रेट जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और अभी जो आप कह रहे थे नीट का पेपर मैं ये मानता हूँ मैं खुद उसका सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ अध्यापक जब इस नैतिकता को भूल जाएगा क्या उसकी जिम्मेदारी है क्या उसके दायित्व है तो मैं समझता हूँ ये समाज थोड़ा भरोसे के लायक नहीं रहेगा तो उसे अपने बिल्कुल जो हाई लेवल की वैल्यूज़ हैं उसको निभाना होगा और हम चंद लालच में वो कहते हैं ना कि अब तो दरवाजे से अपने नाम की तख्ती उतार लफ्ज़ गंदे हो गए और शोहरत भी गाली हो गई तो जब शोहरत गाली बनने लगे और लफ्ज़ नंगे होने लगे तो हमें कहीं ना कहीं पुलिस और शिक्षक में फ़र्क करना पड़ेगा और उस फर्क को समझते हुए अगर हम आते हैं तो मैं समझता हूँ समाज बहुत ऊँचा जाएगा और सिस्टम में कहीं ना कहीं जो कमी है उसको ठीक करने की आवश्यकता है मुझे लगता है ऑनलाइन उसको ले लिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा
0: जी।
2: और ये जो पेपर आउट होते हैं इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाएंगी मेरा अपना ये मानना है
1: माथुर साहब बिल्कुल
3: बड़ा अच्छा हमारे शंभुनाथ जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है मुझे एक वाकया याद आता है ये तकरीबन 1986 के आसपास की बात है मैं यंग प्रोफेसर था उस वक्त और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक नए प्रो वाइस चांसलर आए थे मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा और उन्होंने आन के सब प्रोफेसर्स की यूनिवर्सिटी के सब प्रोफेसर्स की एक मीटिंग की और उसमें ये मुद्दा उठाया कि भाई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इतने दिनों से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट का उस ज़माने में नेपाल स्टेट को जितना गवर्नमेंट पैसा देती थी उससे ज़्यादा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की ग्रांट थी उनका हम इतना पैसा हमें मिलता है लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं जुडिशियल सर्विसेज हैं उसमें अलीगढ़ का रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं है जितना होना चाहिए तो वो उन्होंने कहा साहब आप लोग अपनी अपनी राय दें कि क्यों ऐसा है तो खैर मुझसे बहुत सीनियर लोग थे मेरा नंबर तो बड़े बाद में आया वहाँ और सब लोगों ने तकरीबन ये कहा कि नहीं साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं और एफर्ट करेंगे कोई मुद्दा नहीं पकड़ा किसी ने मुझे थोड़ी कुछ झुंझलाहट सी होने लगी जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा साहब और यूनिवर्सिटी अपना बड़ा अच्छा काम कर रही है सब ये कह रहे थे जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा साहब ऐसा है कि सर सैयद अहमद ने जिस विजन से यूनिवर्सिटी बनाई थी वो तो ये काम कर रही है अपना उसके लिए हमें कोई ये नहीं कहना चाहिए कि यूनिवर्सिटी अपना काम पूरा नहीं कर रही तो उन्होंने कहा कैसे मैंने कहा विजन सर सैयद का ये था कि एवरेज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एवरेज एजुकेशन दी जाए तो हमारी यूनिवर्सिटी बिल्कुल एवरेज दे रही है एजुकेशन वो कोई अच्छी वाली एजुकेशन का एम ही नहीं है हमारा हमने कभी ये एम किया ही नहीं कि हम एट द टॉप ऑफ लैडर जाएंगे अब वो जो वहाँ के बुज़ुर्ग वो थे वो तो बड़े बेचारे वो हुए और एक आवाज़ इसकी भी आई कि भाई नहीं ऐसा नहीं है लेकिन वो नए वाइस चांसलर जो थे उनका आपसे तो ज़रा लंबा डिस्कशन करना पड़ेगा मुझे अलग से बुलाया खैर वो उसमें देखिए बात ये है कि जैसा अभी हमारे शंभुनाथ जी ने कहा अगर टीचर आप अच्छे नहीं रखेंगे, अगर टीचर पैसे पे गिर जाएगा तो फिर सिस्टम आगे नहीं चलेगा। तो सब में पहली शर्त किसी भी सिस्टम को, वो नीट एग्जामिनेशन हो, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो, किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन हो, आप कुछ कर लें, अगर जो माली है वो ही सींचेगा नहीं ठीक से तो पेड़ नहीं बढ़ सकता। तो सब में अहम बात यह है कि आप टीचर को, अच्छे टीचर को पैसे की कभी ज़रूरत नहीं होती। मुझे ख्याल है मेरे टीचर थे एक प्रोफेसर सरकार, वो ये कहा, बंगाली में बोलते थे, बोले, वो ये कहते थे, तुम अपना काम करते रहते, पैसा पीछे पीछे आता, एंड दिस इज़ द फैक्ट। तो आपने देखा होगा, जैसा अभी शंभुनाथ जी ने भी कहा कि हमारे टीचर्स का मॉरल बढ़ना चाहिए, अगर टीचर पर्चा बनाने के बाद पर्चा आउट कर देता है तो फिर वो टीचर नहीं है। ये लीकेज वहाँ से हुआ, इसमें आप कुछ कर लें, इतना बड़ा नंबर है, जितनी न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा लड़कों के लिए मतलब बैठते हैं एक एक इम्तहान में लड़के, तो वहाँ आप क्या करेंगे। तो बेसिक इश्यू यह है कि हमें अपनी मॉरेलिटीज़ और फिर नए जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है जैसे आप करने वाले हैं उन सबको आजमाना चाहिए। तो आई थिंक
1: इसमें माथुर साहब आपने पैसे की जो बात कही, और एक्चुअली वही मुझको बात पिछले दिनों मीडिया में भी ये बात हुई है कि एजुकेशन में संजीव जी इतने माफिया वगैरह,
0: मतलब
1: माफिया वर्ल्ड एजुकेशन के साथ थोड़ा मिसफिट लगता है, लेकिन जिस हिसाब की जो समाचार जो हम पढ़ रहे हैं रिपोर्ट्स में बिल्कुल सत्यता लग रही है। मतलब करोड़ों हजारों करोड़ का बिजनेस कोचिंग सेंटर्स का चल रहा है। तो माथुर साहब आप कल्पना करिए कि जिस शिक्षक को जो है वो पेपर सेट करने की जिम्मेदारी दी गई है उसके ऊपर कितना, उन हजारों करोड़ वालों के लिए 50 करोड़ किसी एक आदमी को दे देना, उसके घर पहुंचा देना कोई बहुत बड़ी बात
0: नहीं
1: है, और ईमान डोल सकता है।
3: नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ईमान नहीं डोल सकता, ईमान ज़रूर डोल सकता है, लेकिन शिक्षक नहीं है फिर वो, आप उसे शिक्षक की श्रेणी में मत रखिए। यहाँ बहुत बड़े हुए हैं और पेपर क्या सेट यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं होते, हर जगह सेट होते हैं पेपर, और माफिया हर जगह जाता है। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आप उस लेवल पर ले जा रहे हैं। मैं भी नेट सेटिंग, नेट के पेपर में, मैं जैसे यूपीएससी में जब था तो साइंस एडवाइज़र भी था, बहुत से पेपर्स के उसमें बहुत सी चीज़ें हमें मालूम होती थी, तो क्या वो हम लीक कर दिया करते थे, ऐसा नहीं होता।
2: जैसे मैं इसमें एक चीज़ जोड़ूँगा आपको, कहा जाता है कि समाचार कब बनते हैं, आप लोग तो समाचार सुना रहे हैं
0: जी,
2: समाचार तब नहीं बनता जैसे अगर कोई कुत्ता अपने मुंह में हड्डी ले जा रहा है तो एज यूजुअल है, लेकिन अगर वही हड्डी एक मनुष्य अपने मुंह में दबा ले तो समाचार का विषय बन जाता है। तो अगर पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, पटवारी रिश्वत लेता है, वकील रिश्वत लेता है, तो ये समाचार नहीं है, लेकिन एक अध्यापक जब रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो ये बड़ा समाचार है, क्योंकि समाज कुछ और अपेक्षा रखता है, और वही मॉरल की बात मैं कह रहा था। दूसरी बात यह है कि आपने पैसे को जोड़ा, सबको आवश्यकता होती है, सही बात है, लेकिन हमें ये देखना है कि वो बाई प्रोडक्ट है, सह उत्पाद है। अगर आप अपने मुख्य उत्पाद पर ध्यान देते हैं, जैसे किसान है
0: जी,
2: किसान गेहूं बोता है, अगर वो ढंग से गेहूं बोए तो भूसा तो अपने आप आएगा, भूसा कुछ होता नहीं है, भूसा बाई प्रोडक्ट है, और कभी कभी बाई प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट है उससे भी अच्छा माना जाता है, जैसे सोयाबीन का जो सोया चंक आता है वो बाई प्रोडक्ट है। तो अगर आप सही ढंग से ईमानदारी से आप अपने शिक्षक कार्य को करते हैं तो जो चीज़ें सुविधाएं हैं, पैसा है, तनख्वाह है, प्रसिद्धि है, नाम है, यश है, ये सब तो बाई प्रोडक्ट की चीज़ें हैं। जिस दिन हमारा ध्यान बाई प्रोडक्ट पर लग जाएगा, मुख्य उत्पाद पर नहीं रहेगा, उस दिन ये चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, और यही हुआ है। जब हम सुविधाओं को देखने लग जाते हैं तो हमारा मुख्य कर्तव्य नहीं हो पाता।
0: लेकिन मेरा ये कहना है कि जो जो भी सिस्टम है या जो प्रक्रिया है वो फिर ऐसी बननी चाहिए कि कोई लालच आए या कोई बेईमान हो जाए, बट वो चीज अफेक्ट नहीं होनी। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 100 लोगों ने पेपर बनाया, अब किसी को पता ही नहीं है कि वो 100 लोगों में से किसका पेपर लास्ट मिनट पे, तो वही है टेक्नोलॉजी ही कुछ करना करके सोल्यूशन निकालना होगा।
1: मिला जुला है, अब जैसे मिलिट्री सीक्रेट्स होते हैं, इतनी हाई लेवल
0: वो भी लीक होते हैं,
1: وہ بھی لیک ہو جاتے ہیں اور وہ لیک نہیں بھی ہوتے تھوڑے سے لیک ہوتے ہیں میجورٹی لیک نہیں ہوتے وہ ہائی مورل والے ہوتے ہیں اتنے امپورٹنٹ ان کو معلوم ہے کہ ہاں یہ انفارمیشن میں بیچنا چاہوں تو میرے سات پیڑھیوں کو کھانا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ ایسا نہیں کرتے کیونکہ وہ مورل والی بات ہوتی ہے
0: وہ ہے تو بیسیکلی ایک تو کہ بھائی لالچ بچایا جائے کسی نے سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو کہ کوئی لالچی ہوتا بھی ہے تو بھی وہ نہ توڑ پائے اور دوسرا اگر کوئی توڑے پھر سزا اتنی تگڑی ہونی چاہیے کہ آدمی کو لگے کہ یار اگر میں پکڑا گیا تو یہ ہوگا تو از اٹ ورتھ ٹیکنگ دا رسک تو ابھی کیا ہو رہا ہے ہر ایک کو لگتا ہے کہ ہاں پیسہ لیا پیسہ دوں گا میرا کوئی سسٹم کچھ بگاڑے گا نہیں تو اس کے لیے ہر کوئی ہمت کر لیتا ہے
2: دونوں ہونا چاہیے جیسے آپ نے دنڈ کہا تو پرسکار بھی جیسے بچہ کوئی بہت اچھا کرتا ہے کلاس میں
0: جی دونوں ہی
2: اس کو پرسکار بھی دیا جاتا ہے اور پنشمنٹ بھی تو اگر آپ بہت اچھا اپنا کام کرتے ہیں تو اس کا انسینٹیو بھی ہو اور اگر خراب کرتے ہیں تو بہت ہی کڑے شبدوں میں اس کی نندا اور اس کے لیے پنشمنٹ بھی ہو
0: اب جیسے مجھے لگتا ہے 10 سال کی سزا کر دی ہے کہہ رہے ہیں کہ کر دیں گے
3: کیوں صاحب میں ذرا ایک پرشن آپ سب سے ہی کرنا چاہوں واقعی کیا سزا کا اثر کرائم کے اوپر ہوتا ہے کوئی آدمی کوئی کرائم اس ڈر سے کہ مجھے یہ سزا ملے گی
0: نہیں
3: چھوڑ دیتا ہے
0: نہیں
3: آپ کبھی سوچ کے دیکھیے
0: وہ نہیں بٹ کہیں پہ میں نے یہ
3: ہماری مانتا ہے کہ اگر ہم نے سزا کڑی کر دی تو اب کرائم نہیں ہوگا لیکن ہر کرائم ہو رہا ہے زیادہ تعداد میں ہو رہا ہے
2: لیکن ماتھر صاحب قانون کا جاننے والا تھوڑا ڈرپوک تو ہوتا ہے ڈرتا ہے قانون سے وہ جانتا ہے کہ اس کا یہ حصر ہوگا تو تھوڑا سا نینترن تو ہوتا ہے
0: کہیں پہ میں نے پڑھا کہ آپ کتنی جلدی جسٹس کو
3: ڈرائیور کریں یہ امپورٹنٹ بات ہے یہ امپورٹنٹ
1: اور میرے خیال سے یہ جو وارتا کو اگر میں سارانش میں پرستت کروں تو یہ جو سمسیا تھوڑی ساماجک اور تھوڑی ہماری پروسیس ریلیٹڈ جس کو بولتے ہیں کہ ایک جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو پورا کرے ہر ایک جو سویدھا ہو جو کس طریقے سے اس کو کنڈیوسو بنانا ہے تاکہ پروسیس پورا پیپر بنے اور انت تک جو ہے وہ اس میں جو بھی ہولز پاسبل ہیں ان کو بند کیا جائے اور اس کے علاوہ ایک جو ساماجک استر کی بھی جو بات کرتے ہیں بھائی آپ یہ ہے کہ کئی بار ہم غلط کام کرنے کے لیے جیسا ماتھر صاحب نے بتایا سزا سے نہیں ڈرتے بلکہ ہم اس چیز سے زیادہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہمارے بچوں کو پتہ چلا یار میں نے ایسا کیا تو یار وہ کیا سوچیں گے تو سماجک دباؤ بھی ہوتا ہے تو چلیے جٹل وشے ہے شروتاؤں اور ہمارے شروتاؤں میں بھی گیانی شکشت سب سارے آڈینس ہے تو آپ لوگ بھی بتائیے کہ اس آپ اگر کچھ اس میں فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہم کو گروپ پر دیجیے اور ہم نشچے ہی ساجھا کرنا چاہیں گے تاکہ اور لوگوں تک آپ کی بات پہنچے اور اس کو کیسے بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور ہم اپنے سنگیت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں تو سنجیب جی ایک اور فلم فیئر والا گانا جو ہے شروتاؤں کو سنواتے ہیں
0: چلیے